0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খান্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने

0: की सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: As Prime Minister Modi's highly successful state visit to Australia draws to a close, today's engagements mark the final leg of his Melbourne itinerary before he departs for the next destination on his three-nation tour. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit reports that Mr. Modi is scheduled to meet the leader of the opposition, Angus Taylor, to discuss bilateral ties and political cooperation. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand on the third and last leg of his three-nation visit. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. The visit to New Zealand will be the first visit by the Indian Prime Minister in 40 years. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, the Prime Minister will address a large gathering of the Indian diaspora during the visit. Union Home Minister Amit Shah has said that a secure border, a prosperous border region and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents of police from border districts in New Zealand. I beg your pardon, in New Delhi. Mr. Shah said the government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free. He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs and ensure 100% implementation of government welfare schemes. The BJP has announced the names of Sukhendu Sekhar Roy, Sushmita Dev and Prakash Chigbaraik as its candidates for the Rajya Sabha by-polls in West Bengal. The by-polls to these seats will be held on the 24th of this month. The three leaders recently quit the All India Trinamool Congress and joined the BJP. Former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been laid to rest at the Imam Reza Shrine in Mashhad as thousands of supporters gathered to pay their final farewells.

0: উপাসনা অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজিৰ উপাসনা অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাই জীৱেশ্বৰ গোস্বামী আৰু সংগীবৃন্দই পৰিৱেশন কৰা নাম গুণীন্দ্ৰনাথ ওজাৰ কণ্ঠত বৰগীত বাণী জয়ৰাম আৰু সংগীবৃন্দই পৰিৱেশন কৰা ভজন শুনিলে। এতিয়া নিবেদন কৰিছোঁ শিল্পীৰ পৃথিৱীত এভুমুখী অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠান যুগুতাই আগবঢ়াইছে কিৰণ চন্দ্ৰ নাথে।
1: নমস্কাৰ নগাঁও, নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা। আপোনালোক য'তেই আছে নিশ্চয় কুশলে আছে আৰু শান্তিৰে আছে, লগতে শুনি আছে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকে পুৱাৰ এই সময়খিনিত নিশ্চয় বিভিন্ন কামৰ মাজত ব্যস্ত হৈ আছে। ব্যস্ততাসমূহৰ মাজতে আপোনালোকে টিউন কৰি লৈছে FM বেণ্ডৰ 102.7 মেগাহাৰ্টজত আকাশবাণী নগাঁও, আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি থকাৰ বাবে আপোনালোকক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিভিন্ন সৰু বৰ কথাৰে সজাই আনিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটি। শ্ৰোতাসকল, শিল্পীৰ পৃথিৱীত এভুমুখীৰ এই বিশেষ খণ্ডটিলৈ আপোনালোক সকলোকে সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটি যুগুত কৰি আগবঢ়াবলৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছিলগৈ নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত। নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগ আৰু নগাঁৱৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীত মঞ্চই শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বৰগীতৰ এখনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। এই কৰ্মশালাখনিত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল কলিকতাৰ এগৰাকী বিখ্যাত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিল্পী, লগতে ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক উজ্জ্বল দত্তই। ভালেমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বৰগীতৰ কৰ্মশালাখনিত আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত বিশিষ্ট শিল্পী উজ্জ্বল দত্তই এইদৰে কয়।
2: জি উজ্জ্বল দত্তা, মই পিছলে 3 সাল সে ইয়াৰ পৰা আ ৰহা হুঁ, 24, 25 আৰু 26। তো পিছলে 3 সাল সে মই ইয়াৰ কে বচ্চো কো দেখা, বহুত আচ্ছে হ্যাঁ, ইনকো প্ৰপাৰ ট্ৰেনিং শায়দ নাই মিলতা ইয়াৰ পৰা। অগৰ ইনকো ট্ৰেনিং ঠিক সে দিয়া যায় সারা দুনিয়া মে গা সকতে হ্যাঁ। আপকো মালুম হ্যায় নগাঁও সে বেগম পারভিন সুলতানা উঠি হ্যায়, সারা দুনিয়া উনকো পহচানতি হ্যায়। ये तो एक इस भूमि का तो एक मायने रखता है, जहाँ से इतना बड़ा कलाकार जन्म लिया, सारा इंडिया में उन्होंने नाम किया, इतना अच्छा परफॉर्म की। अगर ये बच्चे को ठीक से अगर सिखाया जाए, मैं तो सिर्फ पिछले 2 साल में 5 दिन का वर्कशॉप था, इस बार 7 दिन का हुआ। तो अगर हर महीने इसको ठीक से ट्रेनिंग दिया जाए तो इसका रूप अलग निकलेगा। साल में एक बार आप बैठते हैं किसी के पास, उसका इफेक्ट जितना होता है उससे अगर हर महीने या 2 महीने बाद अगर इनको बैठाया जाए अच्छे आदमी के सामने, जो अच्छे गुरु होते हैं उनके पास अगर ये तालीम ले, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस बार भी कम से कम 30-35 लड़के की यहाँ पर वर्कशॉप, तो उनमें से 8-10 तो बहुत अच्छे हैं, बाकी सब ठीक हैं, पहली बार आ रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं।
3: रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
2: प्रैक्टिस कैसे होता है, असल में क्या रियाज करना पड़ता है ये इनको मालूम नहीं। क्या क्या करना पड़ता है, किससे गला अच्छा होता है, किससे आपका नॉलेज बढ़ता है, किससे आप गा सकते हैं दूसरे स्ट्रीम के गाना। गाना तो सिर्फ एक जैसा नहीं होता, गाना एक होता है अच्छा गाना, एक खराब गाना। तो जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए कॉमर्शियल भी गाना कोई मुश्किल नहीं। हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसा चीज़ है जिससे गला इस तरह से तैयार होता है कि उससे आप कॉमर्शियल गाए तो उसमें हो जाए, आप अगर ख्याल गाते हैं तो उसमें होता है, गज़ल गाते हैं तो उसमें भी वो तैयार होता है। यह सब्जेक्ट तो आपको सीखने के लिए पहले वो सब चीज़ करना पड़ता है जिससे गला अच्छा हो, आपका नॉलेज बढ़े, फिर आप गा सकते हो।
3: ठीक है, क्लासिकल गाने के लिए, क्लासिकल गाने के लिए वो आदमी क्लासिकल सुनना कितना ज़रूरत था?
2: देखिए, लिसनिंग तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता ही नहीं है कैसे होता है चीज़ तो ये कैसे होगा,
3: कैसा हुआ? हाँ, ख्याल कैसा?
2: हाँ,
3: ख्याल।
2: क्लासिकल म्यूज़िक में पार्ट आता है, हमारे पुराने जो संगीत था वो ध्रुपद थे, ध्रुपद। तो उसके बाद हमारे ख्याल आया, ठुमरी आई, कजरी आई, दादरा, ये लाइट क्लासिकल में आता है। ख्याल गाने के लिए वो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए बैठना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अच्छे को सुनना पड़ता है, फिर आप अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि आप भी गा सकें। आज यहाँ पर मेरा एक चेला गाएगा यहाँ पर, वैभव चक्रवर्ती, वो रविंद्र भारती में अभी BA पढ़ रहा है, तो वो 13 साल से मेरे पास सीख रहा है। उसका परफॉर्म देखिएगा आज, बहुत अच्छा गाता है। उसको नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया।
3: क्या नाम है?
2: वैभव चक्रवर्ती। उसको ऑल इंडिया रेडियो में भी मिल गया युववाणी में। तो एक एक गुरु के पास आप जब लॉन्ग टाइम आप सीखते हैं तो फिर उसका इफेक्ट आपको मिलता है। ये 2-5 दिन का बात नहीं है कि मैं 15 दिन गा लिया फिर हम गाने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तो जन्म, मैं खुद भी अभी सीखता हूँ। मैं पहले जगदीश प्रसाद पंडित के पास सीखा है पटियाला घराने में, अभी मैं पंडित आनंद गुप्ता जी से सीखता हूँ, हाँ, जो किराना और लखनऊ मिला के गाते हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं वो। तो मैं भी अभी सीखता हूँ, हम लोग तो अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझते हैं। यहाँ पर तो एक चीज़ बहुत गलत लिखा है, पंडित उज्ज्वलदाता, पंडित तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ उज्ज्वलदाता होना चाहिए। पंडित तो वो तो खाली लिख देते हैं ऐसे ही, पंडित तो थे जो हमारे गुरु लोग थे वो तो हाँ।
3: लोक संगीत और क्लासिकल,
2: अगर आपको पढ़ना नहीं आता, सोचिए आप, हम कैसे सीखते हैं? ये क है, एक एकर दिए तो के हुआ, ओ कर दिए को हुआ, ये आपको मालूम नहीं, तो आपको जिसको रीडिंग पढ़ना नहीं आता है उसके पास हिस्ट्री भी जो है केमिस्ट्री भी वही सही है। अगर आपको रीडिंग आता है तो फिर आप कोई भी गाना गाओ वो अच्छा ही होगा। मतलब आप खुद रेडी नहीं हो तो आप कोई भी अच्छा गाओगे कैसे? जिसको ये भी मालूम नहीं कि सारे गामा पाजाने से इंडिविजुअल सुर कहाँ कहाँ आता है, जो तानपुरा से ये बोल नहीं पाता वो कैसे गाएगा? एक फोक तो हमारे मिट्टी का गाना है, उसी को रिफाइन करके उस्तादों ने क्लासिकल म्यूज़िक बनाया, तो वो तो जान है। लेकिन फोक में क्या कुछ रॉ चीज़ रहता है जो रिफाइन होके हमारे क्लासिकल में आता है। तो लेकिन क्लासिकल अगर कोई करता है तो उसके लिए फोक भी इजी हो जाएगा, उसके लिए फिल्मी सॉन्ग भी इजी हो जाएगा, उसके लिए बरगीत भी इजी हो जाएंगे।
3: क्लासिकल बिना कोई सॉन्ग नहीं होता है।
2: देखिए, कोई अगर अपना टैलेंट से गा लेता है वो लाखों में एक होता है, उसको देख हम उदाहरण नहीं मानते। इसको करना पड़ता है, फिर आप सीख, अगर आप अच्छी तरह से अच्छे गुरु के पास सीखते हैं तो आप अच्छे गाएंगे, ज़रूर गाएंगे। ये तो सब्जेक्ट हुआ, आप कौन सा गाना गाते हैं, हाँ, तो वो तो अलग बात है। जो अच्छा सीखता है वो सब गाना गा सकता है।
3: ऑल इंडिया रेडियो और क्लासिकल,
2: मैं खुद भी ऑल इंडिया रेडियो का बीहाई आर्टिस्ट हूँ कलकत्ता का। अभी तो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो एक है जहाँ पर ये क्लासिकल म्यूज़िक को बचा के रखा है, शास्त्रीय संगीत को बचा के रखा है। हम लोग आभारी हैं उनके पास कि हमारा प्रोग्राम होता है बोल के अभी भी क्लासिकल चल रहा है। तो नहीं तो बाकी और दूरदर्शन बोली उसमें भी कुछ कुछ आता है, लेकिन हमारे ये ऑल इंडिया रेडियो हमेशा रोज़ हमारे जैसे कलकत्ता में 8:30 बजे सुबह को, रात 9 बजे, रात 11 बजे, तीनों टाइम होता है क्लासिकल म्यूज़िक। इससे बच्चे अगर चाहे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक के प्रचार प्रसार ऑल इंडिया रेडियो जैसे कहीं पर भी नहीं होता है। इसलिए सब जितने भी उस्ताद हुए, जितने भी पंडित हुए, सब आभारी हैं ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, हम लोग भी हैं। ये नौगांव में मैं 3 साल से आ रहा हूँ, इस बार लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया क्लास के बारे में, तो अगर यहाँ पर भी आते तो यहाँ का भी माहौल तैयार होगा। असल में आप कैसे इन्वायरमेंट देते हैं बच्चों को, इसके ऊपर सब कुछ होता है। हाँ, अगर आप अच्छे चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आपको वो करना है। इसमें बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियन को ठीक होना चाहिए,
3: एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा।
2: हाँ, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको सुनाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट सुनाना पड़ेगा बच्चों को।
3: अच्छा है
2: सुनने के लिए तो आदमी चाहिए उसके लिए बहुत एजुकेटेड आदमी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40

0: वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान

0: कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: শ্রোতাই গীত শুনিছে আকাশবাণী নগাঁৱৰ পৰা। অনুষ্ঠানত এইবাৰ নিবেদন কৰিছোঁ শিল্পী আফতাব আহমেদ আৰু উষা মংগেশকৰৰ কণ্ঠৰ এই গীতটি।

जी, तो अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था चांदनी चौक। हमारे श्रोताओं को बताना है कि इस गीत को आवाज किसने दी थी और गीतकार संगीतकार के नाम भी अगर आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। कितना प्यारा गीत था ये। और गायिका का नाम बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सुरीला सफर थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, भीतर सांस खींचिए और पता लगाइए कि क्या जो मुझे लगा वो आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये गीत सुनने में एक ही तरह के तो लग रहे हैं, है ना? वही भाव, वही उसी तरह का माहौल। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सफर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग की पहचान करना तो मुश्किल नहीं है, हवाएं और दिल जैसे शब्दों से ही पता चल जाता है कि आज का कार्यक्रम किस राग पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अंदाज में अव्वल अनुसंधानिक अभिनव प्रयास की एक और अनुपम श्रृंखला स्वागत योग्य और सराहनीय है। राग रागिनी के तिलस्मी सम्मोहन से समरसता संभाव युक्त गीत संगीत आधारित कार्यक्रम कुछ जटिल मगर संभाव्यता पूर्ण है। नई दिशा दर्शन कराती सुरीला सफर का रोमांच आज संभवतः अपनी चरम पर रहेगा, इंतजार है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और आगे आप लिखते हैं कि समानता वाले संभावित गीत आपने लिखे भी हैं और बहुत गीत आपके सही जा रहे हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम को अंत तक और आपको पता लगेगा कि जो आपने सोचा ठीक वही हमने भी सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गाने का कोई भी हो इबारत पढ़कर लगता है कि वाकई में आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा। मधुर और सदाबहार गीतों के माध्यम से आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का सफर सुरीला तो होगा ही। तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हमारे दो सवाल।

तो आपको बताना है कि ऐसे और कौन से दो गीत जो आपको याद है या आपको महसूस हुए, उन गानों का जिक्र करिए, सिर्फ दो गानों का, जिसमें आपको लगेगा कि ये दोनों गीत जब जब मैंने सुने मुझे लगा कि ये दोनों गीत एक से हैं। और हमारा दूसरा सवाल, अगर आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं हमारे जो श्रोता, जैसा कि हमें हमारा फेसबुक पेज देखने पर पढ़ने पर पता चल रहा है, तो आपको कौन सा शास्त्रीय राग पर आधारित गाया हुआ गीत ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी अपनी पसंद के राग होते हैं ना, तो आपको किस राग ने ज्यादा प्रभावित किया, ये वही लिखें जिन्हें शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों का थोड़ा सा विज्ञान है। सवाल एक बार फिर से कि आप बताइए ऐसे दो गीत जो लगभग एक जैसा ही गाए हुए आपको महसूस होते हैं। और हाँ, हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है या उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा हुआ है, तो बताइए आप

को किस राग पर आधारित फिल्मी गीत ज्यादा पसंद आए? और हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म चांदनी चौक में जो गीत गाया गया है वो किस गायिका की आवाज है और संगीतकार और गीतकार कौन है। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां। ये गीत भी हमें थोड़ा थोड़ा वैसा ही महसूस होता है जैसे इससे पहले के दो गीत आपने सुने थे।

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग तो। हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजीला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं। राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा।

रखा है, तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है, हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है, और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता, वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया, गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है, कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गई, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए, जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया, बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो एसडी बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है, और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं, और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए, ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया,

लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती है ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने। और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज़ किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे ना रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हो कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब की बोल थी और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोल थे। इस गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती, बात और आगे बढ़ी। और 1985 आरडी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आरडी बर्मन के संगीत साम्राज्य के नौ रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोंसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोंसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड, राग पहाड़ी है चांदनी चौक। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का यह है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ये कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरो कर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुँचाया उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा, मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं, यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम। इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर

0: रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे। राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे नहीं थे। भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी दस शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे

0: घने कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और

0: साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये अंदाजा आप जरूर लगाइएगा कि आज हम किस
1: मिनट सिद्धंगा उन्नार। अच्छे से मार्केट तो अनुसंधान कलिगिन उत्पत्ति

0: చేత నిర్వహించబడ
1: लेने हैं किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की बात है कि भुरभुरी दोमट या

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग

0: मुंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
1: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की और धुन एस एन त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं,

0: ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: अच्छा, 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चे आ गया छोटा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं क्षमा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं,
0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है,
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी,
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको
1: बहुत
0: गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले,
0: जी जी जी
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो फिर
1: जैसे नहीं आता है।
0: हाँ जी,
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झरो पे से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का,
1: जी
0: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं
1: क्या
0: अभी।
1: बात है।
0: जी
1: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
0: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब टिमटिमा
1: जी
0: पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
1: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले? क्या
0: जी घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
1: बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं।
0: जी।
1: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें हैं? याद है तो साझा कीजिए।
0: जी। मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ, तो
1: जी
0: साथ में खेले हैं हम लोग
1: जी
0: पानी में, बारिश में वहाँ पर। जी
1: जी
0: तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को। जी
1: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए, आपकी पसंद का?
0: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, नीता जी आपको
0: जी
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह
0: जी
1: फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ।
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मेरे को
0: करती थी?
1: तो बारिश में भीगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ,
0: जी
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं।
0: जी, तो
1: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीठ पर का गाना है। दिल अपना पीठ
0: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है।
0: जी,
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना, गृहिणी
1: बन
0: की।
1: ही जाता है।
0: जी, जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया, है ना?
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी,
0: जी
1: बहू,
0: जी
1: पोते पोती,
0: क्या बात है, भरा
1: बच्चे।
0: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ।
0: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिभा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है,
0: जी
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी के,
0: हाँ
1: हरी भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी। और बार
1: और उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
1: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती
0: हाँ।
1: थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाए।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी, ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ सुबह से रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: है। रामचरितमानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है।
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
0: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के।
0: जी, और
1: मैं सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है।
0: जी,
1: स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से,
0: जी।
1: वो है ना कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक ठीक ठीक। तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: बहुत ही सुहाना है,
1: जी
0: चारों तरफ हरियाली, पानी, और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
1: क्या बात है, यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
0: बहुत हो रही है हम
1: तो
0: जी।
1: बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा
0: जी
1: कीजिए।
0: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
1: जी,
0: तो मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी
1: जी
0: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
1: जी
0: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
1: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
0: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
1: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
0: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
1: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
0: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शो बरकरार है मेरी, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
1: जी
0: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं,
1: क्या
0: कभी
1: बात
0: कभी
1: है,
0: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है
1: बहुत अच्छा
0: ऐसा।
1: लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
0: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
1: जी
0: तो ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ,
1: जी
0: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था
1: जी
0: पहला स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
1: जी जी जी
0: तो बहुत खेला है। मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है और वही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
1: जी
0: स्कूल पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
1: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
0: और
1: में।
0: भी अच्छा लगता।
1: तो अंजू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
1: तो अंजू जी आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने
0: हैं। क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो हाँ, ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब की रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है।
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ,
0: उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, हाँ, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत, हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से।
0: अच्छा।
1: बिना सीखे ही बहुत बनाते थे और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है, ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना। अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं नहीं खाना हम अच्छा बनाते हैं और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी।
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलक मंदिर का ये प्यारा
1: आते
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हमको बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी,
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है।
1: जी
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियाँ रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें।
0: जी
1: हाँ,
0: और बारिश में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना।
1: हाँ,
0: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीज़ें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज़ हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज़ बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
0: जी
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी,
0: अच्छा
1: इस
0: तो
1: तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी
1: नंदी
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुनकर के।
1: हाँ,
0: और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत,
1: हाँ, ये गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002-4662, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867-0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की जुबा हेलो सहेली।

उदास यश रोज वहां बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म के चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को

और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुक कर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600

0: अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: लक्ष्मण इन तीस

तबस्सुम वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशी होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशी होती गई। बड़ा मुश्किल ये अफसाना हो गया, किसी ने देखा एक नजर और दिल उनका हो गया।

आजीब को देखकर रश्क होता है। ये खनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया, ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ, कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे।

चंद्रमा को दिन के उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए, खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था।

0: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह

0: आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.